0: Coffee Island, Jazzle FM, India Ninja.
1: जनबे 5 78 24 171 रूपा स्टोर्स रोल्पा नगर पालिका 4 लिबांग थुड़ीखेल रोल्पा।

0: रेडियो थाहा संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास।
1: रेडियो थाहा संचार 99.4 मा अबको प्रस्तुति
0: जीवन गंगा।